0: ओए के हो तेरो नाम
1: सरोज
0: के इन्टरनेसनल खालको मान्छे हुँ बुझ्यो नि यति सजिलै हातमा आउँछ जुन काम अधुरो रहे नि नेक्स्ट टाइम पुरा गरौँ।

0: मैं फूल हूँ सुगंध की, मैं चंद्रमा हूँ चमकती, मैं धरती हूँ आकाश थी। क्षितिज नै भेटौला मनको प्यास मेटौला, कोमल ओठ तिमी रातो लाली, तिमी मेरो काली म तिम्रो काली।
1: Nice.

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे